0: ला नशा ला हेला नशा ला
1: दिवे ही एफएम नुवाधिया 1 मेगाहर्ट्ज
2: मीहुं बुने लोईपकी एतं हास वाहके बुने देहु सासके एनम विस मीगे में उफाविरिकं गेनुवनी ए वाहकता कायको हिक्केम रागे कुलला मिहुनीमा

0: सिंह
1: हाँ
0: मी देखेनी हो वर्ल्ड कप के वाहक
1: हाँ दे वाहक मी दोसर देखे नहीं देखे
0: मी फहारो वर्ल्ड कप के उनका वारत तफात तो कंतत तक हैं ये बही मनी केंदे
1: हाँ मी फहार के मैं गीना का वादा करा वर्ल्ड कप फुटबॉल वारे काम में वाणी
0: कागर कितना टीम हैं ही वाणी उसे ना
1: मी फर्स्ट तो सातवर को मैं हंदा वाणी
0: के
1: नहीं
0: साढ़े साठ एम वाक वाक गेरो मी बोलते होंगे PSM देहराज एक अड़ों नोदी हाथर में चलाई पूरा
1: हाँ और
0: PSM के हम चैनल तक उन नी TVM और न दावण
1: STV
0: हाँ STV हम हो रही है मिच तक एक लाइव कोम फ्रेंड आने हम हिले एप्पस अगेन देख को मिल थी देहराज ये तो ना हमें ये बगैरस ते PSM मम्मी एम वारब वारंग इन चीज़ आम ता PSM का हम क्या मिसलांगर है मुसो
2: हां
0: कोवा वर्ल्ड कप की हा और कत यार
2: दे वरत आई जा दे तंग को लाही वेट तो ओन्ना कट तो
1: एई मसले के तो
0: एई दो मसले
2: एई मसले गा रेडी हो के ना टीम फेवरेट
1: मुसो कोवा सपोर्ट कोला टीम किया सा दान कोवा मुसो में उम्मीद करवे ने कोंटियो का सपोर्ट करवे ने करतो
2: मैं हरो हरवे सपोर्ट करा टीम बोल दे तरी फाइन रात करे
0: रावत हां बे मुसो साहब है के
2: रात करे हम गांव में दान हम तट्टा एक ही पा रात करे अल्लाह रहमत
1: है कोमो सा मैं गिना फरात तो मने ब्राजील में फर तट्टे आते नुली बेने
2: हां हरवे फर नि माफ न ले को मा करे को के
0: ताशी मैं हरो ने फलकी साहब हम सीधा हाइट तरी में मच करा को ते गिन
2: फा आ दे मामूल द वॉइस बोल वाला मारे रात करे भैया
0: इंतजाम तो
2: ගේතරේගම හම ටීවී බලන්න බෙත්ත විබුණා අතන් ඉන්න නිකේ මේ ප්‍රදේශා ගුණ ලැබි හොවිව දෙරේකන අර මේ තිපත
1: සපෝට් කරානේ වගේ කුරුන්තේ දෙක හොරේත මේ එවස් ටීම් එකක් මේ වාර
2: දැන් අවදිස් බ්‍රසීල්ක නේමාර ගන්න දැන් පෝච්කෝ ගේ රොනාල්ඩෝගේ ෆවර්ඩ් කප් එක රොනාල්ඩෝ ඒ සපෝට් කරා කුරුන්තේ වක්වේ කුරුන්තේ දෙරේ
1: ඒක නේමාර දිස් මේ වාරස් කුරේන කෝජෙන් කෝස
0: අනි කුරේන තෝ වනි නේමාර ෆිට නේමාර ෆිට
2: එලා ෆිට
0: නේමාර ෆිට MRI ඉන් දක්කඩි හම් බරාබර් කම එහම ඕකේත
2: उम्मीद
0: की ब्राजील तशी दिबू इंगे कुंभे हास
2: निकं उफलुं हेल्ला दरे हितके उंदो ए फलक कले तितांग इतिंगे निकं उफलुं हेल्ला लते से हितके उंदो
0: एक
2: उंदोले के यापत में नने
0: ओके हम कोंबे का हास कोल दानी
2: देन ती देफरात देन अरुण में जमीजा के इवेंट के बाहर कुरिहा बाहर न देन बेलो अरीत कुरिहा वरात तक
0: मुसकी इन्फोर्नाई

0: भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना।
1: मी कौन फिल्म में कही मैंने डायलॉग है? मी सवाल का जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोरे को बालाना साड़ी शोया जवाब फणोम के सुंगड़िया की अंगार दोग में दम बार गड़ सु मिनट कौम में हफ्ता एक वस्कुरी एक गिंदा बालालन साड़ी मिशो के गेनेस्ते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवरे का महा को इफ़ार नगा गुरा तुम खास हादिया एली बेने एम में गिने सवाल के जवाब रंगल कुरा बैवरे नगानी कौम में महे गिवस एम में फाहुश होगा
2: केस्ते डायलॉग
3: मी हिमनाल दिनी मी हफ्ता के गेस्ट डायलॉग में बै आदि शो के दिन इतरु बैठक का दिम के कुरिं फुरतम दिवे अमिल राव के लवे हिमनाल देना अमिल राव के लवे एक फहो मी तो के शो या हास को लाफवा फिल्म तक आर्गन जहिलाना

0: घर कैसा लगा?
1: अच्छा।
0: और घर वाला?
1: मम्मी जी प्याज फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर दो।
2: रहने दो, तुम्हारे पापा जी को चटनी भी सिलबट्टे की चाहिए।
3: तुम्हारी सास कह रही थी कि खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है।
2: सब्जी काटने के साइज से उसके स्वाद का पता लगता है।
1: मम्मी, हल्दी दही में डालनी है या तड़के में? कैसा बना?
4: नमक कम है।
1: हेल्प नहीं है मम्मा कोई, दिवाकर काम से आके थक जाते हैं और यहाँ काम खत्म ही नहीं होता।
3: ये सब तो सीखना पड़ेगा ना रिचू।
0: हो गया?
1: अभी वो बर्तन बचा है।
4: बहू को घर संभालना तो सिखाना पड़ेगा ना।
5: कम से कम उसको डस्टिंग तो अच्छी तरह करने के लिए कह दीजिए।
6: रिचा बेटा।
0: रिचू।
1: ला रही हूँ।
7: कोई पैशन तो हमारी रिचा को भी बहुत है।
1: मैं डांसर हूँ।
0: हॉबी को जॉब कौन बनाता है?
1: मेरा खुद का डांस ग्रुप भी है।
4: जॉब के लिए तो मैंने मना किया था ना बेटा।
0: बेटा आपकी मम्मी ने PhD की है, मगर घर और बच्चे
4: बस प्रायोरिटी रहे।
0: मैंने बोला था ना वीडियो डिलीट करने को।
1: पुराने वीडियोस को दिलाकर
0: इस घर में रहना है तो उसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे।

0: भूल करके अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो भूल समझकर भुला देना, लेकिन भुलाना सिर्फ भूल को, गलती से भी हमें ना भुला देना।
1: मी कौन फिल्म में गई मैंने डायलॉग है मिसुअल के जवाब फणवाणी पीएसए में आमे दोर को बालाना साड़ी शोया जवाब फणो मुगे सुंगड़िया की अंगार दो होगे मेंदम पार गड़ सु मिनट कम में हफ्ता को स्कूरी एक गेंदा बालाना साड़ी मिशो के गणेशते केस्ते डायलॉग के एम में गिने सुवाल तो के जवाब रंगल कुरा बैवेरे का महा को एफआर नगा गुरतुं खास हादिया एली बेने एम में गिने सुवाल के जवाब रंगल कुरा बैवेरे नगाणी कम में महे गेवस एम में फहुशोगा
2: गेस्ट द डायलॉग ಗೆ ಶೋಗವಿಸ್ ಹಂದಾನು ನುಫಿಲಾಫದ ರೀತಿ ಹಿಗ್ಗಾ ಮದಿ ಬಲಾಲನ್ ಸಳಿ ಇತುರು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಗೆ ಮೌಲು ಮಾತ್ ಕೆನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಿವಗುತ ತಿಯೇಹುಂ ತೆನ್ನ ವಾಕಿ ವಿಲಾಣ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಯ ಹುಂ ತೆನ್ನ ಬಾಜವಿರ್ ವಗುತ್ ಕುಳಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಲಾಂ ವಲೇಕುಂ.

0: Banjo.
1: Deng album mien lave ki mul music tuni siswali miedwis tirasa kura emme khas ellawa lave ki radio head ke laki September navar sathek no di hafahiga radio head oti the bands album ayak magbul kam ge emme kuriga ekamaku ero kuriyang e bod tufan ge hilame wes evis miha karnege virtual album taka emi hun hama emme dohi ki tere ge record kuri milave ki aslu music tarihu badal kolli ओके कंप्यूटर एल्बम के एम में फुरतम प्रीव्यू आदे रोलिंग स्टोन मजल्लाइन दुनिया के उफेदन एम में नुफूज कदा एल्बम के गोतक फाहक कुरी ए रिकॉर्डिंग एम में फुरतम रिकॉर्ड कुर लवे की हम मिलावा आदे लकी तोम योक के रीति असर कदा अडू जोनी ग्रीनवुड के गीता कुलुन तेरिकन मी हम फुंग कॉम्प्लेक्स आदि यूसास तक फुरिकेन बा म्यूजिके लवे के माने की सलाम बम के वाहक ehem bayaku netiken dieruves amille dirihurunge nasiba e nasibaeku hituko fede kuvirikam ge husas bosnia ge hangurama ge mahawlan mi maana fitkollumun hitakura asaru mahfumbe band ge guitarist edo brand fahum bunefawa gotun edohoge avaskama kurangulunukam ge serious kamun enege hashiganu miyadwes hi bihinaga ehma adohala radio hit ke lucky